0: चंदना के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: आइए आज हम कुछ बातें करें खादों के प्रयोग व इनके प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन का लेना बहुत ज़रूरी होता है, यानी पोषक तत्वों को लेना बहुत आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार से पौधों की अच्छी बढ़वार व अधिक उपज के लिए उन्हें पोषक तत्व खाद एवं उर्वरकों के रूप में देना अत्यंत ही ज़रूरी होता है। परंतु अब ये सवाल उठता है कि खाद एवं उर्वरकों की कितनी मात्रा पौधों को दें जिससे कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, मिट्टी की भौतिक दशा ठीक प्रकार से बनी रहे और साथ ही साथ किसान को भी आर्थिक तौर पर मुनाफा हो। इसके लिए किसान भाइयों को कोई भी फसल ज़मीन में लगाने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए और ये जांच का कार्य कृषि विभाग के मिट्टी जांच प्रयोगशाला में निःशुल्क होता है। मिट्टी की जांच के बाद मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर ही विभिन्न फसलों के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। मुख्य रूप से एक वर्षीय फसलों में फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा किसी भी फसल की बुवाई या रोपाई से 1 या 2 दिन पहले दे देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा को मुख्य रूप से 2 बार में बांट कर देना चाहिए। पहली मात्रा बुवाई या रोपाई से 25 से 30 दिन बाद और दूसरी मात्रा फूल आने के समय दें। फल रोपण व मसाले वाली फसलों की रोपाई के लिए बने गड्ढों में आधी सड़ी गोबर की खाद और आधी मिट्टी भरकर भर देना चाहिए। कच्ची खाद देने से जड़ों में दीमक का प्रकोप होता है, इसके बाद ही उसमें पौधे लगाने चाहिए। इन पौधों में जब हम खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो इसे 2 किस्तों में करते हैं, आमतौर पर मानसून के बाद और मानसून की शुरुआत से पहले। किसान भाइयों इस बात पर विशेष ध्यान दें कि खाद एवं उर्वरक फल वृक्षों के अनुकूल हों तथा उनको इस प्रकार से दें कि पौधों की जड़ों को कोई हानि ना पहुंचे। उर्वरकों के प्रयोग के समय यह ध्यान रहे कि उर्वरक पौधों के कोमल अंगों तथा पत्तियों आदि पर ना पड़ें। पौधों से लगभग 60 सेंटीमीटर स्थान छोड़कर खाद को 25 सेंटीमीटर गहराई पर थालों की मिट्टी में भली प्रकार मिला दें तथा अगर सूखे का मौसम है तो हल्की सिंचाई भी कर दें। साथ ही साथ इस बात पर ध्यान दें कि छोटे पौधों को खाद का मात्रा में देना चाहिए, परंतु जैसे जैसे पौधे आकार में बढ़ते जाएं, खाद की मात्रा

0: को भी बढ़ाते जाना चाहिए। इसलिए किसान भाई जमीन में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, पौधों की उम्र व फसल विशेष की खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इनका प्रयोग करें। उर्वरक को दो तरीके से फसलों में दिया जाता है, एक तो मिट्टी में मिलाकर और दूसरा घोल के रूप में पत्तियों पर छिड़क कर। घोल के रूप में उर्वरक का प्रयोग तब करते हैं जब किसी पौधे में उर्वरक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। उस कमी को तत्काल दूर करने के लिए उर्वरक का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़कते हैं, जिससे कि आवश्यक उर्वरकों की मात्रा तुरंत पौधों को उपलब्ध हो जाए। लेकिन इस संदर्भ में कुछ ध्यान देने की भी जरूरत है। पत्तियों पर छिड़कने के लिए जो उर्वरकों का घोल तैयार करते हैं, इसके लिए बड़े कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर घोल तेज होता है तो इससे पत्ते नष्ट हो सकते हैं। घोल को छिड़कने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि घोल का छिड़काव यदि तेज धूप में किया जाता है तो पत्तों पर गिरा घोल जल्दी सूखने से अधिक गाढ़ा और तेज हो जाता है और इससे पत्ते जल सकते हैं। इस प्रकार बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लाभान्वित होंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप एग्री टिप्स कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण हो।

0: होता है जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जहाज़रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार MV कैम्बल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज सवेरे 8 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। कार निकोबार की यात्रा पर MV भारत सीमा आज दोपहर 12 बजे श्रीविजयपुरम से जाएगा। जलयान कल बुधवार 22 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। नालंदा नानकारी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर आज 9 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी बृहस्पतिवार 23 तारीख को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से छूटकर नानकारी होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी।

शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से जाएगा। जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से रवाना होगा तथा जलयान की वापसी आज ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी।

एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी आज 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा जलयान की वापसी शाम 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी।

शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज 2:30 पर श्रीविजयपुरम से जाएगा। जलयान की वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा आज शाम 5:00 श्रीविजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा तथा जलयान की वापसी कल बुधवार 22 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी।

0: अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष के इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अरमान एक ऐसी दौलत है जो हर किसी के दिल में बसती है। कुछ अरमान आंखों में चमक बनकर रहते हैं तो कुछ अरमान खामोशी में छिप जाते हैं। हर इंसान अपने अरमानों के सहारे ही जिंदगी का सफर तय करता है। जी हाँ श्रोताओं, आज बातें अरमान की। अक्सर हम देखते हैं कि कभी अरमान पूरे हो जाते हैं तो कभी वही अरमान इंसान को और मजबूत बना देते हैं। अपने अरमानों को कभी मरने मत देना, क्योंकि अरमान ही जिंदगी जीने की सबसे बड़ी वजह है। और शायद इसलिए दिल भी एक महफिल है जहां हर रोज एक नए अरमान जन्म लेते हैं।

दोस्तों, बड़े अरमानों से किया गया प्यार कभी छोटा नहीं होता। हर अरमान में उम्र भर साथ चलने का एक खूबसूरत सपना छिपा होता है। कुछ अरमान आंखों से कह जाते हैं, कुछ सिर्फ दिल ही समझता है। अगर प्यार सच्चा हो तो अरमान वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। यही वजह है कि बड़े अरमानों से शुरू हुई मोहब्बत हमेशा सबसे खास बन जाती है।

दोस्तों, हर अरमान का एक दिन जरूर आता है। जो अरमान दिल से संजोए जाते हैं, उन्हें वक्त भी अधूरा नहीं छोड़ता। जब प्यार में वफा मिल जाए तो हर अरमान मुस्कुराने लगता है, क्योंकि सच्चे अरमान कभी खत्म नहीं होते, बस पूरे होने का सही वक्त का इंतजार करते हैं।

दोस्तों, हर अरमान मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं। कुछ अरमान वफा निभाते निभाते खामोशी में आंसुओं के साथ बह जाते हैं, लेकिन टूटे हुए अरमान भी इंसान को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं, क्योंकि अधूरे अरमान दर्द जरूर देते हैं, मगर इंसान को पहले

0: इंद्रधनुष कार्यक्रम का ये सफर आज शबाना के साथ बस इतना ही, होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी शबाना बेगम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 306वीं कड़ी।

रावण को चुनौती देने के लिए श्रीराम ने एक ऐसे वाण का संधान किया जो उसके छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूलों को काटता गिराता तर्कस में वापस आ गया। उपस्थित असुर समुदाय आतंकित हो गया। सबको भयभीत देख रावण ने अपने पराक्रम और निर्भयता का उद्घोष किया।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 306वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और कविता कृष्णा मूर्ति तथा संगीत संयोजन सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम और जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। कार्यक्रमों का विवरण। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। और अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में खेल जगत के अंतर्गत आप सुनेंगे फीफा पर कार्यक्रम होगा फीफा 2026 विश्व फुटबॉल की नई कहानी पर चर्चा। प्रस्तुतकर्ता होंगी जयशीला। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकारा होंगी रानू मुखर्जी और शारदा। तराने सुहाने कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद आप ले पाएंगे सवेरे 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दीपा मनमथन का कर्नाटक शैली में गायन आप सुन पाएंगे। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1132वीं कड़ी आप सुनेंगे दिन के 11 बजे। चित्रगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। तेलुगु कार्यक्रम दोपहर 12 बजे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम आप सुन पाएंगे।

1:10 में सुगम संगीत कार्यक्रम में फनकारा होंगी वत्सला मेहरा। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का समय होगा 1:30। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर

स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यू ही गाते रहो। आज हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे मनहर। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। बहारों की शाम कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए 4:45 पर। तमिल कार्यक्रम सुनिए 4:00 और 5:30 पर आप बंगला कार्यक्रम सुन पाएंगे। 6:00 किसान वाणी कार्यक्रम के तहत हरितोष विश्वास से बातचीत होगी। बातचीत का विषय होगा प्रगतिशील कृषक। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम में बहार का समय 6:30। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएँ दी जाएगी।

इन कार्यक्रम के अलावा रात्रि 8 बजे 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा हुई है। सवेरे 7:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 90% तथा न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 31.1 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:04 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:47। मौसम की जानकारी के बाद अब सुनिए विमान की उड़ान संबंधी सूचना। दिल्ली से आ रही यात्री विमान संख्या 2937 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी 11:40 पर।

ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी, मोड प्रायोजित कार्यक्रम, मोड तथा निःशुल्क मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवावचारी ऑडियो प्रारूप, ब्रॉडकास्ट, प्रश्न

0: प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 तथा उसके नवीनतम संशोधन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्य विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल hairportblur@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। यह सुनहरा अवसर ना चूके अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक तथा पहुंचाने के लिए आज ही अपना प्रस्ताव भेजें। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंडमान निकोबार पुलिस ने कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में समुद्री पुलिसिंग पर पहले 21 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर के लिए आमंत्रित किया गया है और लपाती समुद्र तट पर एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 2 दिवसीय बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पुरस्कार समारोह में उपस्थित रहेंगे। पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है। श्री डोभाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, डोकलाम वार्ता और बालाकोट हवाई हमले सहित कई प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरल कैडर के 1968 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी डोभाल ने खुफिया विभाग में 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा की और बाद में खुफिया ब्यूरो के प्रमुख बने। वे वर्तमान में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अंडमान निकोबार पुलिस ने कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में 46 होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए समुद्री पुलिसिंग पर पहले 21 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस उप महानिरीक्षक जितेंद्र कुमार मीणा ने किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगाथन, प्रधानाचार्य उमा शंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 अगस्त तक चलेगा, जिसे पुलिस, मैरिन फोर्स

और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। तटीय पुलिसिंग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 2025 के निर्णयों को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस 21 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को कक्षा शिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण, क्षेत्र अभ्यास और मूल्यांकन की जानकारी दी जाएगी। श्री मीणा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए द्वीप समूह के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की ओर से कल द्वीप समूह के वीर शहीदों में से एक कैप्टन असीम कुमार भट्टाचार्य जी सेना पदक मरणोपरांत के सम्मान में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। शहीद के स्मारक पट्टिका पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए, जिसके बाद अधिकारी की पवित्र स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। ये समारोह 20 जुलाई 2000 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में देश के लिए दिए गए कैप्टन भट्टाचार्य जी के सर्वोच्च बलिदान के प्रति संस्थान और समाज के सामूहिक सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कैप्टन भट्टाचार्य जी की वीरता और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण द्वीप समूह के युवाओं के लिए हमेशा एक मार्गदर्शक प्रकाश बना रहेगा। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने कुत्तों में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस की पुष्टि की है। केनाइन डिस्टेम्पर एक जानलेवा वायरल बीमारी है। विभाग ने इसे देखते हुए पशु मालिकों के लिए परामर्श जारी कर शीघ्र पशु चिकित्सक से संपर्क करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर और वॉलीबॉल टूर्नामेंट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय की ओर से पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये मेला 4 से 21 सितंबर तक साइंस सिटी एग्जीबिशन ग्राउंड कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। हस्तशिल्प और हथकरघा, कपड़ा और परिधान, होम फर्निशिंग, चमड़े के सामान, क्रॉकरी, प्रोसेस्ड फूड, हर्बल, आयुर्वेदिक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, लाइफस्टाइल उत्पाद तथा फर्नीचर और इंटीरियर उत्पादों के निर्माण में लगे पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यम इस मेले में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी उद्यम खरीद और विपणन सहायता योजना के घटक के तहत निर्मित स्टॉल के किराए पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दिव्यांग और आकांक्षी जिला इकाइयों के लिए 100% सब्सिडी दी जाएगी। द्वीप समूह के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को PMS योजना के दिशा निर्देशों के अधीन प्रति आयोजन प्रति उद्यम अधिकतम 80,000 रुपये तक की समग्र सहायता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन और PMS योजना के दिशा निर्देशों के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन किया जा सकता है। निकोबार जिला पुलिस की ओर से हाल ही में लपाते समुद्र तट पर एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए 2 दिवसीय बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में भारतीय वायुसेना, शिक्षा विभाग और अंडमान निकोबार पुलिस सहित विभिन्न विभागों के साथ साथ क्षेत्र के कई ग्रामीण टीमों ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच खेल भावना, एकता और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना था। पुरुषों के वर्ग में तमालू गांव की टीम विजेता रही, जबकि महिलाओं की टीम में एरोंग गांव की टीम विजयी रही। विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी प्रतिभागी टीमों को उनके योगदान और खेल भावना के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान के घटक कॉलेज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए आवश्यकता के आधार पर विभिन्न विषयों में अतिथि संकाय के रूप में नियुक्त हेतु पात्र उम्मीदवार

उम्मीदवारों की अंतिम वरीयता सूची अपलोड कर दी है। सूची महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट jnrm.and.nic.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में दावे और आपत्तियां ईमेल के माध्यम से या ऑफलाइन मोड पर 23 जुलाई शाम 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। अंतिम वरीयता सूची 27 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की ओर से कल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। फ्लैग पॉइंट में आयोजित ओपन ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने पहली चाल चलकर टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन किया। समापन अवसर पर टूर्नामेंट के शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंडमान निकोबार पुलिस ने कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में समुद्री पुलिसिंग पर पहले 21 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर के लिए आमंत्रित किया गया है और लपाती समुद्र तट पर एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 2 दिवसीय बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम।

श्रोताओं, देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा गीत सुनवाने जा रहे हैं जो 1962 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए लिखा गया था। दोस्तों, जो हंसते हंसते सरहद पर अपनी जान लुटा गए, वे अपने लहू से भारत की तकदीर सजा गए। उनकी कुर्बानी का हर पल सम्मान करना, यही सच्ची श्रद्धांजलि है, यही उनका मान करना है। तिरंगे की हर लहर में वीरों की कहानी है, हर सांस में बसती उनकी अमर निशानी है।

दोस्तों, क्या आपने सोचा है, जैसे हम अपने घर से दूर चले जाते हैं, तब हमें अपने घर की बहुत याद आती है। ठीक ऐसे ही हमारे सैनिकों और वीरों की भी कहानी है। कोई अपनी माँ को याद करता है, तो कोई अपनी पत्नी और बच्चों को। उनके याद करने का उद्देश्य एक ही होता है कि वे उनसे प्रेम करते हैं।

जिस मिट्टी ने चलना सिखाया उसे कैसे भुला दूँ, जिस वतन ने जीना सिखाया उसे कैसे छोड़ दूँ। हर धड़कन में तिरंगे का सम्मान बसा है, मेरे हर अरमान में हिंदुस्तान बसा है। दूर रहकर भी दिल यही लौट आता है, क्योंकि अपना देश हर पल प्यार से बुलाता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के माह की 30वीं तिथि यानी दिन 21 जुलाई 2026। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति कभी गिरता है तो वह कभी गिरकर पड़ा नहीं रहता, बल्कि वह उठता है और आगे बढ़ता है। ठीक ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में जितने भी परेशानियां आए उनका सामना कर आगे बढ़ना है। श्रोताओं, खेल जगत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फीफा पर कार्यक्रम, फीफा 2026 विश्व फुटबॉल की नई कहानी पर चर्चा। प्रस्तुत करता है जयशीला।

खेल जगत कार्यक्रम में सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल अपने शिखर पर पहुंचता है, तब पूरा विश्व एक ही भावना में बंध जाता है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, महाद्वीप और देश सब एक गेंद और 22 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द सिमट जाते हैं। यही है फीफा विश्व कप की सबसे बड़ी ताकत। वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। सबसे पहले इसकी मेजबानी पहली बार 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने मिलकर विश्व कप का आयोजन किया। 3 देशों के अनेक आधुनिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबलों ने दर्शकों को रोमांच और उत्साह से भर दिया। दूसरी बड़ी विशेषता थी 48 टीमों की भागीदारी। श्रोताओं, इससे पहले विश्व कप में 32 टीमें खेलती थीं, लेकिन इस बार अधिक देशों को अवसर मिला। इससे एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका की कई टीमों ने पहली बार विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाई।

उद्घाटन समारोह रंगों, संगीत और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम था। दुनिया भर से आए लाखों दर्शकों ने इस महाकुंभ का स्वागत किया। ग्रुप चरण में ही कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। परंपरागत दिग्गजों ने अपना दबदबा बनाए रखा, वहीं कुछ उभरती टीमों ने भी शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान आकर्षित किया। स्पेन पूरे टूर्नामेंट में सबसे संतुलित टीमों में से एक रही। टीम की सबसे बड़ी ताकत थी सामूहिक खेल, गेंद पर शानदार नियंत्रण, तेज पासिंग, अनुशासित रक्षण और अवसर मिलने पर सटीक आक्रमण। स्पेन ने अपने प्रत्येक मुकाबले में धैर्य और रणनीति का परिचय दिया। यही कारण था कि पूरे टूर्नामेंट में उसे विश्व की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाने लगा। अर्जेंटीना ने अपने अनुभव और संतुलित खेल से लगातार जीत दर्ज की। फ्रांस ने अपनी तेज आक्रमण शैली से विरोधियों को चुनौती दी। इंग्लैंड ने युवा खिलाड़ियों के दम पर प्रभावशाली प्रदर्शन किया। ब्राजील ने हमेशा की तरह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, लेकिन नॉकआउट चरण में उसे बाहर होना पड़ा। पुर्तगाल, बेल्जियम और मोरक्को जैसी टीमों ने भी यादगार प्रदर्शन किया। नॉकआउट मुकाबलों में एक छोटी सी गलती भी हार का कारण बन सकती थी। स्पेन ने राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल को हराया, क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम जैसी मजबूत टीम को मात दी, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर स्पेन ने शानदार अंदाज में फाइनल में प्रवेश किया। दूसरी ओर अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरे विश्व कप फाइनल में जगह बनाई। July 19, 2026, दुनिया की निगाहें न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम पर थीं। एक ओर मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी ओर 2010 की विश्व विजेता स्पेन। पहले मिनट से ही दोनों टीमों ने शानदार फुटबॉल का प्रदर्शन किया। पहले हाफ में गेंद पर नियंत्रण को लेकर कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने कई आक्रमण किए, लेकिन गोलकीपरों और रक्षा पंक्ति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। निर्धारित 90 मिनट तक कोई भी गोल नहीं हुआ। मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंचा। 106वें मिनट में स्पेन के फॉरवर्ड फेरान टोरेस ने शानदार मूव बनाते हुए निर्णायक गोल कर दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अर्जेंटीना ने अंतिम मिनटों तक संघर्ष किया, लेकिन स्पेन की रक्षा पंक्ति अधिक रही। अंततः अंतिम सीटी के साथ स्पेन 1-0 से विजेता बना। इस जीत के साथ स्पेन ने अपने इतिहास का दूसरा फीफा विश्व कप अपने नाम किया। पहला खिताब उसने 2010 में जीता था। लगभग 16 वर्षों बाद स्पेन फिर विश्व फुटबॉल के शिखर पर पहुंचा। मुख्य कोच लुइस डेला फुएंते की रणनीति और खिलाड़ियों के अनुशासन ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रोताओं, इस टूर्नामेंट की प्रमुख उपलब्धियां रही: पहली बार 48 देशों की भागीदारी, 3 देशों की संयुक्त मेजबानी, रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों की उपस्थिति, आधुनिक तकनीक और वीडियो असिस्टेंट रेफरी का प्रभावी उपयोग, युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, फुटबॉल का और अधिक वैश्वीकरण। श्रोताओं, भारत में भी फुटबॉल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में फुटबॉल के प्रति उत्साह लगातार बढ़ रहा है। यदि जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रतियोगिताएं उपलब्ध कराई जाएं, तो भारतीय फुटबॉल भी विश्व स्तर पर नई पहचान बना सकता है। श्रोताओं,

फुटबॉल हमें सिखाता है अनुशासन, टीम भावना, संघर्ष, धैर्य और कभी हार ना मानने का साहस। यही मूल्य खेल को जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बनाते हैं। श्रोताओं, फीफा विश्व कप 2026 ने केवल एक नया विश्व विजेता नहीं दिया, बल्कि ये भी साबित किया कि खेल दुनिया को जोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति है। स्पेन की ये ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और विश्व फुटबॉल के स्वर्णिम इतिहास में सदैव याद रखी जाएगी। इसी संदेश के साथ आज का खेल जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

किया, बल्कि ये भी साबित किया कि खेल दुनिया को जोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति है। स्पेन की ये ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और विश्व फुटबॉल के स्वर्णिम इतिहास में सदैव याद रखी जाएगी। इसी संदेश के साथ आज का खेल जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप खेल जगत में फीफा पर कार्यक्रम फीफा 2026 विश्व फुटबॉल की नई कहानी सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत आइए अब कुछ फिल्मी गीतों का आनंद लेते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं साजन चले ससुराल फिल्म से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। धुन तैयार किया है नदीम श्रवण और गीत को लिखा है समीर ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार लीजिए सुनिए कुणाल गंजावाला और श्रेया घोषाल की आवाज़ में सायद कदरी का लिखा गीत, फिल्म का नाम फरेब।

उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं फिदा फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है समीर और संगीत में पिरोया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, इसी के साथ ही अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपके साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेज

0: मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई

0: क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, NHPC के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है,

0: चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on a commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
3: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with wider Eastern European region. Both sides have shown keen interest in deepening economic ties in priority sectors such as agriculture, pharmaceuticals, science and technology, information technology, and IT-enabled services. North Macedonia is a landlocked country in southeastern Europe. The Indian community in the country is very small, with most members working in the IT sector, teaching at universities, or serving as executives in multinational companies. With Subhashree Mahapatra, this is Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
2: India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odessa in Ukraine. External Affairs Ministry said 4 Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry

श्रोताओं, अभी आप रानू मुखर्जी और शारदा का गाया गीत सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं प्रेम रोग फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। धुन तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत को लिखा है संतोष आनंद ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं घर फिल्म का ये गीत। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: तो याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTI। तो ARTI बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV/AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTI रोज लिया क्या? नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत। गीत रचना PT नरेंद्र शर्मा की तथा स्वर दिया है लता मंगेशकर और साथियों ने।
5: नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसे लड़ने से पहले ही आदमी हार जाता है। मैं हार गया हूं छाया।
6: सुदीप।
5: हाँ छाया, लगता है यहां तो सिर्फ दूसरों के सर पे पांव रख के ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है। सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहां गुहा चला गया। इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए।
6: मैं तुम्हारे साथ हूं सुदीप, तुम्हारे साथ छोटी सी खोली में भी अपना घर बसा लूंगी।
5: झूठे आदर्श की बात मत करो, चिढ़ होती है मुझे। घर बना लो, कपड़े के लीर का दिया जलाओगी और शाम को आधी सूखी रोटी खिलाकर सोचोगी कि हम लोगों ने घर बना लिया। हाथों में पेट लिए घूमोगी तुम और मैं पेट पे हाथ रखे घूमूंगा। इसे घर कहती हो तुम? नहीं छाया, बहुत देखा है ऐसे पीले चेहरों वाला आदर्श।
6: तुम निराश होगे सुदीप, मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
5: हाँ, विश्वास, विश्वास।
4: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं नक्श लैलपुरी और गुलजार का लिखा एवं जयदेव का संगीतबद्ध किया हुआ गीत रूना लैला की आवाजों में। फिल्म का नाम घरौंदा।

हसरत जयपुरी की रचना में अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। संगम फिल्म से संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मेरा नाम जोकर फिल्म से। फिल्म के इस गीत को लिखा नीरज तथा धुन दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। स्वर है मुकेश की।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए दीपा मनमथन का कर्नाटक शैली में गायन, इनके साथ वायलिन पर एम रविंद्रन, मृदंगम पर आर वैद्यनाथन ने संगति की है। तो लीजिए पहले सुनिए राग सहाना जो आदिताल में निबद्ध है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। अब सुनिए राग पतुवारली, जो रूपकम ताल में निबद्ध है।

शास्त्र संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप दीपा मनमथन का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिंग इज ब्लिंग से। गायक कलाकार है दिलजीत देशनज, ज्योति नूरा, सुल्ताना नूरा, संगीत व रचना स्नेहा कानवालकर की।

सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में तैयार ऑफलाइन जेट फिल्म का गीत आतिफ असलम की आवाज़ में रचना की है प्रिया सरैया ने।

मीका सिंह, सोनू निगम, डॉली संधू की आवाज़ों में ये है सेंटा बंटा फिल्म का गीत, बोल कुमार के हैं और धुन तैयार किया है जस्सी कलत्याल ने।

अरमान मलिक और नितिन मोहन के स्वरों में सुनवा रहे हैं आपको बार बार देखो फिल्म का गीत। कुमार के लिखे गीत को धुन से सजाया है अरमान मलिक ने।

AR रहमान के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुने इरशाद कामिल का लिखा गीत श्रीराज उपाल जसविंदर सिंह की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सांझना।

0: Tú eres fiel de muchas que.
1: अभी आप मीका सिंह, कनिका कपूर, सोनू निगम की आवाज़ों में तुतक तुतक तूतिया फिल्म का गीत सुन रहे थे। ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुने इरशाद कामिल का लिखा गीत। श्रीराज उपाल जसविंदर सिंह की आवाज़ों में फिल्म का नाम है रांझना।

अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान के स्वरों में पेश है सिवाय फिल्म का गीत। रचनाकार है साहिद कादरी और संगीत मिथुन का।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशन।

0: एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुने मयूरपुरी का लिखा गीत साहिद मलैया की आवाज में। फिल्म का नाम है डिशुम।

फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में, बोल मनोज मुतशिर के हैं और संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मुंबई सिटी फिल्म का, जिसे गाया है अल्ताफ हासिम ने, संगीत ऋषभ खान के और रचनाकार है निशार अख्तर।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1332वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
3: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
3: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
3: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
3: जॉन बील मेला
2: जी,
3: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
3: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
3: जी पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
3: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
3: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
3: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
2: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
3: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
2: जी।
3: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
2: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
3: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
2: जी।
3: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
2: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
3: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
2: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
3: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की

0: ही में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन व्हील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जॉन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
1: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्यौहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया, यमन भैया, कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ?
3: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
3: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
4: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
3: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
4: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
4: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
5: नमस्ते पापा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
5: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
5: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना। हाँ, हाँ, टैक्सी पे चलते हैं। हाँ, आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
4: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
6: अरे आइए आइए वर्मा जी।

0: नमस्ते नमस्ते
1: नमस्ते अंकल
0: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना,
2: बिल्कुल ठीक पहचाना।
0: आइए, स्वागत है आप सबका।
2: धन्यवाद।
0: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
2: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
1: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
0: थैंक यू।
3: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
0: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
2: जी,
0: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
2: बिल्कुल ठीक कहा।
0: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
2: अरे
0: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
2: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
1: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
2: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
3: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
0: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
2: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
1: यह तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
0: थैंक यू।
2: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
0: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
2: अच्छा
1: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
0: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
2: जल उत्सव क्यों?
0: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
2: अच्छा।
0: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
2: हाँ।
0: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
2: जी।
3: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
0: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
1: तो हम भी चले?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो आ जाओ।
1: चलो चलो चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गयी थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
5: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
1: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
5: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
0: अरे।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
0: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
1: अच्छा।
0: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
1: जी अंकल।
0: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
6: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब ना

0: बच्चे गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
1: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
2: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
3: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
4: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.
4: उमंग उमंग उमंग उमंग.
5: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1332वीं कड़ी सुन रहे थे.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम चित्रगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं हमराज फिल्म से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति और बाबू सुप्रियो की। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और रचना की है समीर ने।

आनंद बख्शी का लिखा, जतिन ललित का संगीत बद किया, ये है क्रांति फिल्म का गीत। गायक कलाकार है उदित नारायण और अलका याग्निक।

चमेली फिल्म से लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज़ में संदेश शंदिल्या के संगीत निर्देशन में तैयार गीत, गीत के बोल ऋषभ कामिन ने लिखे हैं।

फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से सुनिए अगला गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और बाबू सुप्रियो ने। बोल नदीम श्रवण के हैं और संगीत दिया है समीर ने।

0: जमीन फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रगीत अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। पेश है तेलुगु कार्यक्रम।
1: ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపుర కేంద్రం ప్రియమైన శ్రోతలకు నమస్కారం.

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। पेश है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर

0: शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एसएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, also known as Mangal Milan, at Parliament House Complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi said all those involved in the paper leak case have been arrested, with 13 accused currently lodged in jail.
2: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
2: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है।
1: Mr. Rijiju said Prime Minister Modi also spoke about the free trade agreements that India has signed with several countries. Referring to the ongoing monsoon session of Parliament, the Prime Minister said the NDA will play a constructive and positive role in ensuring the passage of bills.

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में वत्सला मेहरा का गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, पेश है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9474234000। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9474234000। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें आई है मेरठ कैट से, दिग्दर्शन और कविता गौण का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

अगली फरमाइश हमें आई है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं दो रास्ते फिल्म का ये गीत।

अगली फरमाइशी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजा है मध्य प्रदेश से बिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं रन फिल्म का ये गीत।

झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा, हसन बाबू, मिर्शा, बेबी चाहत, साधिया ने हमें फरमाइशी फरमाइश भेजा है। ये सुनना चाहते हैं सिलसिले फिल्म का ये गीत।

जंगली फिल्म के गीत के लिए हमें फरमाइश भेजा है पी एस नहावकर निर्मला विश्वास ने नरवेल महाराष्ट्र से। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश गीत हमें भेजा है महाराष्ट्र से बाला साहिब अंजलि राम निवास धनंजय ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं मन चली फिल्म का ये गीत।

अभी आप आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने को हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ओवर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ईस्ट, मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉर द डे. The Central Drugs Standard Control Organization has granted marketing authorization for India's first dengue vaccine, the attenuated dengue vaccine Q-Denga-R, to strengthen national dengue prevention efforts. This is the first dengue vaccine approved in the country for the prevention of dengue disease. The vaccine is approved for the prevention of dengue disease in individuals of 4 to 60 years of age. The vaccine has already received regulatory approval in 42 countries, including the European Union, the United Kingdom, Switzerland, Indonesia, Malaysia, and Thailand. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravali Hills and ranges. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses supported by documentary evidence or other verifiable material through email at mshbcaravali@gmail.com within 3 weeks. Martyrdom Day is being observed by the Congress and the two factions of the Trinamool Congress in West Bengal today. On the 21st of July 1993, 13 workers of the Youth Congress were killed by the police firing in Kolkata. In China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10-21-14 defeat to Malaysia's Leong Jun Hao in Changzhou today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in any NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namche district, rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया. उन्होंने नीट प्रश्नपत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया. संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित. सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी. प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है. आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया. प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं.
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें.
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं.
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का

0: इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है और भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले

0: से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदों में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन,

0: नागालैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msHPC@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कल सुबह तक के मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय दोपहर के 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: पलकों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, बस तुम।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब प्रस्तुत होता है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

सभी सुनने वालों को जय शीला का नमस्कार। श्रोताओं, आज का ये अंक समर्पित है उस महान गीतकार को जिसने अपने सरल, सहज और दिल को छू लेने वाले शब्दों से करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं को आवाज़ दी।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अमर गीतकार आनंद बख्शी की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 21 जुलाई 1930 को हुआ था। अपने 5 दशक के करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में 6000 से अधिक सदाबहार गीत लिखे और उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। आनंद बख्शी का मानना था कि गीत वही है जिसे हर आम इंसान समझ सके, गुनगुना सके। यही कारण है कि उनके गीत केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहे बल्कि हर पीढ़ी की यादों का हिस्सा बन गए।

1969 का वर्ष आनंद बख्शी के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। आराधना की अपार सफलता ने उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय गीतकारों की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। श्रोताओं, रिश्तों की गर्माहट और भावनाओं की सच्चाई को शब्द देना आनंद बख्शी की सबसे बड़ी ताकत थी। चाहे दोस्ती हो या प्यार, उनके गीत जीवन का हिस्सा बन जाते थे। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शोले का वो गीत जो आज भी दोस्ती की मिसाल माना जाता है।

श्रोताओं, प्रेम की मासूमियत, विश्वास और अपनापन, इन भावनाओं को जितनी सहजता से आनंद बख्शी ने शब्द दिए, वो उनकी अनूठी पहचान बन गई। उन्होंने हर तरह के गीत लिखे। बदलते दौर के साथ आनंद बख्शी ने स्वयं को भी बदला। 70 के दशक से लेकर नई सदी तक उनकी लेखनी उतनी ही प्रासंगिक रही। यही उनकी रचनात्मक

जी हाँ श्रोताओं, नई पीढ़ी ने भी आनंद बख्शी को उतना ही प्यार दिया जितना पहले की पीढ़ियों ने। जीवन की यात्रा, समय का प्रवाह और रिश्तों की अहमियत, इन सबको आनंद बख्शी ने बहुत सहज शब्दों में व्यक्त किया। यही कारण है कि उनके गीत समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण लगने लगते हैं।

श्रोताओं, कहा जाता है कि आनंद बख्शी किसी भी फिल्म की कहानी और उसके पात्रों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ लेते थे। यही वजह थी कि उनके गीत केवल फिल्म का हिस्सा नहीं बनते थे, बल्कि फिल्म की आत्मा बन जाती थी। श्रोताओं, आनंद बख्शी ने सिर्फ फिल्मों में गीत नहीं लिखा, बल्कि कुछ फिल्मों में उन्होंने गीत भी गाए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ गाया हुआ फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा को अपने गीतों से अमर करने वाले महान गीतकार आनंद बख्शी 30 मार्च 2002 को इस दुनिया से विदा हो गए। आज शारीरिक रूप से भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत सदा हमें उनकी याद दिलाती रहेगी।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजे हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अपनी दूसरी सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
2: सिल्लामनिनी रोखा रामांग इंगिरे तगा लामक तेलिंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर है 684 किलोहर्ट्ज रामांग एलिंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिन कातलुन ही इंग लहरा गम डायरेक्टरेट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर ने इम्प्लीमेंटिंग गम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स स्कीम किने द फिनेंशियल असिस्टेंस इन ही निकोबारी ट्राइबल इला गम मेडिकल ट्रीटमेंट निमिचन स्कीम नंगने लकु यिप द पोहांगन ने इनवा इन ही आई निकोबारी यिप चम तम ल ट्रीटमेंट ने चु मैनलैंड किने द फाइनेंशियल सपोर्ट चा अंगु नि स्कीम इंग स्कीम यिप एलिजिबल निकोबारी एसटी पेशेंट यिप द रेफर इन अलग नलग एलगम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इसरी विजयपुरम रामुल स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ने चु मैनलैंड नंग हिंग हि किने कु मिन तगम फाइनेंशियल असिस्टेंस यिप द वाहव ने इमिने तरोल कांगेन तकिरंग इनवा तसा heart ailments, kidney disease, cancer, hek tenupteng serious inwa, anu unun inwa, tekawar tang iskim. Ne nuntel nge inlahan iskim, min neke kuhi, i alanup expenditure hi, i re takre, ay treatment, ay iman len min. Tasanup medical investigation, treatment, medicines, hek transportation inre, yen poro na lengel chong, hek lengel kufut inre, ke ku min anga a patient. Asa condition up inwa, a patient मिन नम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाती मिन नंगेच लकुयो 90% मिन गम तके तुव न आसा एस्टिमेट कॉस्ट गम ट्रीटमेंट हे ट्रांसपोर्टेशन इंट्रे गजब गजब त 10% रॉक तित मिन न उनोइट किनहित गन ट्रीटमेंट अ पेशेंट्स नके तुव न होल उतन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स तसा नु पिल्स वाउचर हे तनु ताहेंग इंट्रे निंगिनेच लकु ही अंडर गम स्कीम न सैंक्शन मिन तंगम सेक्रेटरी ट्राइबल welfare andaman nikobar administration nasa recommendation ngam directorate of health services andaman nikobar administration yip eligible nikobari st beneficiaries yip to lonu na avail ngi benefits ngi scheme mi hoina contact ngam directorate of tribal welfare secretariat complex yen ho ru tami kalon de tin lain rena submit no applications lamak ting ngam directorate of tribal welfare ngi min katlon ngam andaman nikobar administration secretary नरूह लकु तुम सुम काम सबमिटिंग नुप फॉर्म गम मैट्रिक लेवल पोस्ट वैकेंसी नोटिस नंबर 4-13/2026-RNE-2022 डेट 1 June 2026 तंगम हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट इंट्रे वैकेंसी नोटिस नंबर 4-12/2026-RNE-214 डेट 4 June 2026 मिकाहतुलोन यिप कैंडिडेट्स यिप तहलो नु यिप त अलन फिल मिने फॉर्म तंगम लास्ट डेट फिनिलंगम मैट्रिक पोस्ट लेवल नेतेलंगिप त नेरनाइसात अलाउ चिंगेट मिन नेतेलंगि त नेरसिन कंडो तहतम नम हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट नेतेलंगिप त लुई अना अलाउ चिंगेट इत नेरसिन कंडो तहतम ये ही हॉफिल मिने फॉर्म मि हॉय विजिट गम ऑफिशियल वेबसाइट https://erecruitment.andamannicobar.gov.in होय दे

0: ngacin tahi hangam program tahalil lenga ta asuniren netin ke halile behol hi a sapeha ho ye hanga tel nga hang in ngacin da mu hek in hurit hangrong itak sa te ite fan kan ro tala harap ngayen
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं मनहर।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ देर बाद यानी शाम 4:45 पर सुनिए कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल में शाम 5 बजे आप सुन पाएंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का आनंद लीजिए शाम 5:30 पर। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में आंगनवाड़ी एवं मुर्गी पालन से जुड़ी महिला श्रीमती रजनी देवी से बातचीत की जाएगी। शाम में बहार कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश की शान, जो कि केंद्रित होगा बुलंद आवाज के धनी मुकेश पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन पाएंगे रात 8:15 पर। रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान। और रात 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संदेश से आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8 बजे संसद समीक्षा, रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा उर्वरकों का सही प्रयोग भाग एक। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम पसंद शीर्षक पर केंद्रित होगा। 6:30 पर रामचरितमानस गान की 307वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। वतन के गीत कार्यक्रम का समय रहेगा 6:40। 6:50 पर बताया जाएगा मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। 7:00 सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी। जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आनंद लीजिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर और शब्बीर कुमार। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में धोंदुतई कुलकर्णी का गायन प्रसारित किया जाएगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1333वीं कड़ी। चित्रलोक कार्यक्रम का आनंद

लीजिए 11 बजकर 30 मिनट पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु में होगा महिलाओं के लिए कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12 बजकर 30 मिनट पर। महफिले कवाली कार्यक्रम में दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर कव्वाल होंगे इकबाल हुसैन और साथी। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा 1 बजकर 30 मिनट। दोपहर बाद 2 बजकर 30 मिनट पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी लाइव।

मिनट दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8 बजे संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय है और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10 बजे एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कुमार सानू और सपना मुखर्जी के गाए आंदोलन फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था बर्दाश्त फिल्म से। आवाजें थी उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की। गीत रचना समीर की। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं चरस फिल्म का ये गीत शान और सोनू निगम की आवाज़ों में। बोल जावेद अख्तर के, संगीत पद किया राजू सिंह ने।

0: शान और सोनू निगम के गाए चरस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழமுதம். வணக்கம் நேர்களே,

0: ठीक 6 बजे है। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के

0: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जब जीवन आपकी इच्छाओं के अनुसार न चले तो धैर्य बनाए रखें, क्रोध और निराशा के बजाय शांत मन से परिस्थितियों को स्वीकार करें। समय परिवर्तन लाता है, घाव भरता है और समस्याओं का समाधान देता है, तथा हर कठिन दौर के बाद एक नई उम्मीद लेकर आता है समय। अपने जीवन में समय की अहमियत को समझिए और जीवन में सदा धैर्य बनाकर रखें, परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल हो जाएंगी। साथियों, इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। आज आपको बताना है कि एक्टिवेटेड कार्बन नारियल के किस भाग से बनाया जाता है। भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। किसान साथियों, हमारा आज का प्रश्न है कि एक्टिवेटेड कार्बन नारियल के किस भाग से बनाया जाता है। हम समझते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान साथी जो हैं, वो खेती किसानी के साथ साथ नारियल सुपारी के बागान भी करते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर देना उन किसान भाइयों के लिए बेहद आसान हो जाएगा जिनके पास नारियल के बागान है। फिर भी साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहे, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे। कार्यक्रम के तहत हम इस प्रश्न का सही जवाब आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, कैच द रेन अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाना और उसका अधिकतम उपयोग करना है। अभियान का नारा है, जहां बारिश हो जब भी बारिश हो वर्षा जल को संचित करो। अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं भू जल स्तर को सुधारना, जल की बर्बादी को रोकना, तालाबों, कुओं और जलाशय का संरक्षण एवं पुनर्जीवन करना, लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना। और भाइयों, अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं घरों और सरकारी भवनों में वर्षा के जल संचयन प्रणाली स्थापित करना है, तालाबों, झीलों और कुओं की सफाई एवं मरम्मत करना, नए जल संरक्षण ढांचे बनाना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, गांव और शहरों में जल संरक्षण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। इस अभियान से भविष्य में जल संकट को कम करने में सहायता होगी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, भू जल स्तर बढ़ने से पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार होगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो साथियों, इस अभियान के साथ जुड़े, जल को संरक्षित करें और जीवन को खुशहाल बनाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। भाइयों, अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं रजनी देवी जी से, जो कि आंगनबाड़ी एवं मुर्गी पालन और कृषि कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इनके अनुभव।

0: किसान साथियों, आज हमारे बीच बिमलीटांग गांव की रहने वाली श्रीमती रजनी देवी जी मौजूद हैं। रजनी देवी जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और साथ साथ मुर्गी पालन भी करती हैं। रजनी देवी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: सभी को नमस्कार।
0: हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप आंगनबाड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपके आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो कहाँ है?
1: बिमलीटांग में ही हमारा आंगनबाड़ी है। यहीं पे हम जो है हेल्पर का काम करते हैं। हम दो जन हैं, एक वर्कर है एक हेल्पर है। तो सभी बच्चों को हम लोग आपस में दोनों मिल के संभालते हैं, देखते हैं, तो उनको पका के खिलाना है, इस लोगों का स्नैक्स वगैरह जो बनता है वो है, और उस लोगों को क्या क्या एक्टिविटी कराना, जैसा बच्चों को कैसा सिखाना, खेल खेल के माध्यम से सब सिखाना है, यानी कि जो भी एक्टिविटी कराते हैं वो।
0: एक जैसे प्री स्कूल जो होता है, उस तरह की फैसिलिटीज आप लोग देते हैं
1: हाँ,
0: बच्चों को,
1: वैसे ही देते हैं।
0: तो आप बताइए कि आपकी आंगनवाड़ी केंद्र में कितने बच्चे हैं अभी?
1: 12 से 13 बच्चा रहेंगे हमारे
0: 12 से 13 है,
1: आंगनवाड़ी
0: तो सबकी उम्र समान है, एक ही
1: में।
0: उम्र
1: सबकी
0: के?
1: उम्र समान नहीं है, 6 महीना से लेके
0: हाँ,
1: 3 साल तक का बच्चा उसमें रहते हैं।
0: 6 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता
1: बहुत
0: है
1: छोटा
0: ना?
1: होता है।
0: तो 6 महीने का और 3 साल का बच्चा जो है, इन दोनों ही एज ग्रुप में आप किस तरह से सामंजस्य बैठाती हैं?
1: 6 महीना 7 महीना का बच्चा होता है तो माँ सब लेके आ जाती है, माँ भी हमारे साथ बैठ जाती है,
0: अच्छा,
1: तो उसमें संभालने के लिए आसान हो जाता
0: और जो 3 साल के बच्चे हैं या 4 साल के बच्चे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पर?
1: वहाँ पे। उनको सिखाया जाता है कलर के बारे में, कौन सा कलर कैसा है, और खेल के माध्यम से ही आगे उनको बताया जाता है,
0: छोटी छोटी बातें
1: छोटी
0: सिखाई
1: छोटी
0: जाती
1: बातें
0: हैं, थोड़ा
1: सिखाई जाती
0: बैठना
1: है,
0: सिखा दिया
1: बैठना
0: जाता हो?
1: सिखाती है।
0: अच्छा, तो बच्चे वहाँ इंटरेस्ट लेते हैं?
1: हाँ, बच्चे इंटरेस्ट लेती है।
0: कितने घंटे तक का ये स्कूल चलता है इनका?
1: सुबह 8:30 से लेके 12:30 तक का बच्चों को रखते हैं वहाँ पे।
0: फिर उसके बीच में पढ़ाई लिखाई या एक्टिविटीज के अलावा, फिर उसके बाद कुछ लंच ब्रेक वगैरह होता होगा?
1: लंच होता है
0: हाँ,
1: मॉर्निंग में, बच्चों को दूध देते हैं, जैसा जैसा एक एक दिन का होता है उसी तरह उसमें करती है।
0: जो लंच ब्रेक होता है उसमें आप लोग क्या क्या देते हैं?
1: सुबह मॉर्निंग में तो दूध देते हैं, फिर एक दिन मूंग दाल देते हैं, एक दिन मूंगफली देते हैं
0: मतलब ये टाइम
1: ब्रेकफास्ट
0: टेबल
1: में।
0: बना हुआ है
1: टाइम टेबल
0: पूरे 1 सप्ताह का?
1: एक सप्ताह का पूरा टाइम टेबल है, वो हिसाब से देती है।
0: आप लोग मतलब ये बैलेंस डाइट जिसे हम कहते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ हाँ
0: संतुलित आहार, उसको
1: संतुलित
0: ध्यान में
1: आहार,
0: रख के ही
1: उसको
0: उनका
1: ध्यान में
0: भोजन जो
1: रख
0: है
1: के
0: वो
1: रखना
0: तैयार किया
1: चाहिए।
0: जाता है? बच्चे खाते हैं?
1: हाँ, बच्चे खाते हैं।
0: क्योंकि छोटे बच्चों के साथ सबसे बड़ी परेशानी खाने की होती है, तो
1: हाँ
0: वहां पे केंद्र में आपके खाते हैं,
1: हाँ बच्चे लोग स्कूल में आंगनवाड़ी आने के बाद में बच्चे खाना शुरू करते हैं,
0: सीख जाते
1: सीख
0: हैं?
1: जाते हैं।
0: तो ये आपका एक रूटीन है दिन का।
1: जी
0: इसके
1: हाँ,
0: बाद आप आंगनवाड़ी से कब तक फ्री हो जाते हैं?
1: 1 बजे तक फ्री हो जाती है।
0: 1 बजे फ्री होकर फिर आप घर
1: एक
0: आती
1: बजे
0: हैं?
1: फ्री होके हम घर आते हैं,
0: जी,
1: घर आके अपना थोड़ा सा छोटा सा बिजनेस है उसको करते हैं।
0: वो क्या बिजनेस है?
1: वो मेरा मुर्गी पालन है।
0: मुर्गी पालन करती हैं
1: मुर्गी
0: आप?
1: घर आने के बाद में हम अपनी मुर्गी जो फॉर्म है उसमें लग जाती है।
0: रजनी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कितनी मुर्गियां हैं?
1: मेरे पास में बॉयलर है,
0: जी
1: बॉयलर जो केवल चिकन के लिए होता है,
0: जी
1: वो एक 500 तक का रहेगा।
0: बहुत बड़े तादाद में है आपके पास मुर्गियां?
1: हाँ, इसके अलावा मेरे पास देसी मुर्गी है, 100 तक रहेगा, तो उसी में हम 12 बजे के बाद, जो 1 बजे के बाद छुट्टी होती है, घर आके हम उसी में लग जाते हैं।
0: अच्छा, ब्रॉयलर मुर्गी की पहले हम बात करते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी का जो खाना है, आहार व्यवस्था है, उनके रहने की जो जगह है, वो
1: जी,
0: आपके घर में सब अलग है? मतलब
1: सब
0: अच्छे से
1: अलग है।
0: रखा हुआ है
1: हाँ, अच्छे
0: उनको,
1: से रखा हुआ है।
0: साफ
1: उनका
0: सफाई का ध्यान दिया
1: उनका
0: जाता है?
1: सारा जो भी है सेट वगैरह है सब घर से दूर है,
0: जी
1: और उसका अंदर में सारा व्यवस्था, दाना वगैरह पानी जितना भी है
0: जी
1: सारा कुछ उसमें रखा जाता है।
0: मुर्गियों में बीमारी वगैरह कभी देखी आपने?
1: मुर्गी में बीमारी आती है जब थोड़ा से गर्मी हो जाता है या थोड़ा ज्यादा ठंडा हो
0: जी
1: जाता है, तो तब थोड़ा बीमारी आती है। उसके लिए हम मेडिकल से दवा, जो जानवरों का मेडिकल है वहां से हम दवा वगैरह लेके उनको देते हैं,
0: वेटनरी से? नहीं
1: वेटनरी
0: तो आप
1: से।
0: पहचान जाती हैं कि मुर्गियां जो हैं
1: हाँ,
0: ये
1: पता चल जाता है
0: ठीक
1: कौन सा
0: नहीं है,
1: मुर्गी ठीक नहीं है, तो हम उसको अलग निकाल देते हैं।
0: उनको अलग निकाल दिया
1: उनको
0: जाता
1: अलग
0: है,
1: निकाल के उनको अलग बॉक्स बना के उसमें रख देते हैं।
0: बाकी वेटनरी का सपोर्ट आप लोगों को ठीक मिलता है?
1: मिलता है।
0: अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे कि मुर्गियों से आप क्या उत्पाद लेते हैं?
1: मुर्गी एक तो बॉयलर है, वो जो केवल चिकन का काम आता है,
0: खाने के काम
1: खाने
0: आते?
1: का काम आता है, वो हम केवल होलसेल में सेल कर देते
0: जी
1: हैं। और जो देसी मुर्गी है
0: जी
1: इससे हम लोग को अंडा मिल जाता है, और छोटे बच्चा निकाल लेते हैं हम लोग आगे, और ग्रोथ करने के लिए छोटा बच्चा निकाल लेते हैं, तो इसमें ये हो जाता है। फिर जो मुर्गी बड़ा हो जाते हैं तो
0: जी
1: उनको हम सेल कर देते हैं।
0: देसी मुर्गी का अंडा कितने में बिकता होगा?
1: देसी मुर्गी का अंडा जो मार्केट में रेट आता है, पहले हम पता करते हैं कि मार्केट में

0: क्या रेट चलता है, वो हिसाब से हम लोग अंडा का रेट लगाते हैं या मुर्गी का रेट लगाते हैं।
1: आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं।
0: अच्छे दाम मिल जाते हैं।
1: और जो देसी मुर्गी है, ये अगर कोई गोटा खरीदना चाहे पूरी की पूरी, तो वो कितने दाम तक बिकती है?
0: वो भी मार्केट के ऊपर
1: मार्केट के
0: बात
1: ऊपर है, फिर भी एक एक लमसम मोटे तौर पे
0: ऐसा 400-500 का
1: वेट पे डिपेंड करता है
0: वेट पे
1: ना
0: डिपेंड करता है, वो वेट होगा उस
1: जी।
0: तरह उसका
1: तो आप
0: किलो
1: मुर्गी भी
0: चलेगा।
1: बेच देते होंगे कभी?
0: मुर्गी भी बेच देते हैं, अंडा भी बेच देते हैं।
1: तो इनको लेने वाले जो ग्राहक हैं आपके, मतलब या तो आप अपना सामान लेके मुर्गी को लेके आप शहर तक जाते हैं, या ग्राहक जो है वो खुद आपके पास आ जाते
0: ग्राहक
1: हैं,
0: हमारे पास आ जाते हैं,
1: आपको
0: पहला
1: जाना
0: तो
1: नहीं पड़ता
0: जाना नहीं
1: कहीं?
0: पड़ता है। हमारा जो ग्राहक है वो हैवलॉक से आती
1: अच्छा,
0: हैवलॉक से गाड़ी लेके आती
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: और लेके चले जाते हैं,
1: हाँ
0: तो उनका गाड़ी आता है, सीट में चढ़ाते हैं यहाँ से और यहाँ से लेके जाते हैं। ज़्यादा फोर व्हीलर में तो हम कम दी है, ज़्यादातर हमारा जो
1: हैवलॉक जाता है
0: हैवलॉक
1: आपका?
0: जाता है,
1: अच्छा, तो आपको अच्छी आय मिल जाती है इससे?
0: मिल जाती है।
1: हाँ, आपका घर बाहर मतलब चल रहा है
0: हाँ,
1: इसी
0: घर
1: से।
0: हमारा इसी से चलता है।
1: आप एक महिला हैं, आपने बताया कि आप इतने तादाद में आपने मुर्गी घर की व्यवस्था की है,
0: जी
1: बहुत सारे काम होते हैं,
0: जी
1: ठीक है ना, उनकी देख रेख ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है, बीमार हो जाती हैं तब
0: जी
1: उनकी अलग तरह से देख रेख करनी है,
0: जी
1: फिर उनसे जो मिलने वाले उत्पाद हैं, अंडा हुआ या मुर्गी को बिक्री करनी है, तो वो भी एक काम है। तो
0: जी
1: ये इतने सारे सभी कामों में आप सामंजस्य किस तरह से बैठाती हैं, कैसे आप ये सारे काम जो है कर पाती हैं अकेली?
0: इसमें ज्यादातर मेरे बच्चे मेरे सपोर्ट करते हैं।
1: जी
0: मेरे 4 बच्चे हैं,
1: अच्छा
0: मेरा हस्बैंड नहीं है, उनका
1: अच्छा
0: डेथ हो गया, अभी ये जनवरी में 2 साल हो जाएगा।
1: ओ,
0: तो बच्चे हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं,
1: सब मिलजुल कर रहे हैं
0: सब
1: आप लोग?
0: मिलजुल कर करते हैं।
1: अच्छा,
0: अगर हम थक जाते हैं तो हमारा आधा काम जो है वो कर लेते हैं।
1: नहीं लेकिन आप एक महिला हैं, है ना,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: महिला हो के इस तरह से घर को संभालना,
0: जी
1: आंगनबाड़ी में भी काम करना, साथ में मुर्गी पालन करके
0: जी
1: अपने घर को चलाना, घर की आर्थिकी के लिए आप ये सब काम करती हैं, आप इतना कुछ संभाल लेती हैं, और सुनने वालों को बताइए कि ये सब आप किस तरह से कर पाती हैं?
0: इसके लिए हमें अपना टाइम निकालना पड़ता है,
1: जी,
0: सबसे मेन हमारा टाइम होता है जो मैनेज करना पड़ता है,
1: टाइम
0: सबसे
1: मैनेजमेंट। हाँ
0: टाइम मैनेज करना पड़ता है। जैसे अगर हम दिल में चाहे कि हमको ये काम करना है तो हम वो टाइम निकाल के अपना काम कर लेंगे। एक दिल में जज्बा होना चाहिए
1: बहुत
0: काम
1: खूब,
0: करने, अगर वो दिल में नहीं है कि हमको काम करना तो हम नहीं कर सकेंगे। अगर हम सोच लिए कि मेरा छुट्टी होता है और हमको ये काम करना है तो हम उसमें चले जाएंगे, और हम जो सोच लिया कि नहीं आज हमको काम नहीं करना है तो फिर वो काम नहीं होगा।
1: कहने का मतलब है लगन होनी चाहिए
0: लगन
1: उस
0: होनी
1: काम के
0: चाहिए।
1: लिए, आप में वो लगन साफ दिखाई दे रही है हमें, और आप इतनी अच्छी तरह से आपने अपने घर को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, वो
0: जी
1: बात दूसरी है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो वो
0: बड़े
1: आपका हाथ बटा रहे हैं, लेकिन ये सब काम जो था ये शुरुआत आप ही ने की है।
0: जी
1: हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये काम दिनों दिन बढ़ता जाए और आप बहुत
0: धन्यवाद।
1: ऊंचे आयामों पे पहुंचे, अपने परिवार को संभाला है और बहुत अच्छे काम आप कर रही हैं, अपनी परिवार की आर्थिकी, परिवार की आय में आप बहुत बढ़ोतरी कर रही हैं, आप घर परिवार बहुत अच्छी तरह से चला रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सुनने वाले आपकी इन बातों से ज़रूर प्रेरित होंगे और आप हमारी कार्यक्रम में आई, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ आज बांटी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने श्रीमती रजनी देवी जी से की गई ये बातचीत सुनी, और भाइयों इस बातचीत के बाद अब हम कार्यक्रम के रुख को कुछ गीत संगीत की ओर लिए चलते हैं और आपके साथ आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं कि इसे आपने जरूर पसंद किया होगा। साथियों, रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं और न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि मिट्टी की दशा भी इससे बिगड़ती है। इसलिए आजकल इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। जैविक खाद के क्या कुछ फायदे होते हैं, इस संदर्भ में अब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जिसका विषय है जैविक खाद का उपयोग।
1: आज के समय में खेती में रासायनिक खादों का उपयोग काफी बढ़ गया है। इससे फसल तो जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन इससे मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम प्राकृतिक और सुरक्षित खेती की ओर बढ़े, जिसमें जैविक खाद का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैविक खाद क्या होती है। जैविक खाद वह खाद होती है जो प्राकृतिक चीजों से बनाई जाती है, जैसे गोबर, पौधों के अवशेष, रसोई का कचरा और हरी खाद। यह खाद मिट्टी को पोषण देने के साथ साथ उसकी संरचना को भी बेहतर बनाती है। अब बात करते हैं जैविक खाद

0: ये प्रकारों की। पहला है गोबर खाद, यह सबसे सामान्य और आसानी से उपलब्ध खाद है। इससे पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। यह मिट्टी को पोषक तत्व देती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, यह केंचुओं की मदद से तैयार की जाती है। इसमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और यह फसल की वृद्धि को तेजी से बढ़ाती है। तीसरा है हरी खाद, इसमें कुछ खास पौधों को उगाकर उन्हें खेत में ही मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। अब सवाल आता है कि जैविक खाद का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले खेत की जुताई करते समय जैविक खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दें। फसल बोने से पहले 2 से 3 हफ्ते पहले खाद डालना सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा, फसल के बढ़ने के दौरान भी जरूरत के अनुसार खाद दी जा सकती है। इससे पौधों को लगातार पोषण मिलता रहता है। अब हम इसके फायदों की बात करते हैं। जैविक खाद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखती है। यह मिट्टी की सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है, जिससे मिट्टी जीवित और उपजाऊ बनती है। दूसरा, यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इससे ना तो जल प्रदूषण होता है और ना ही हवा प्रदूषित होती है। तीसरा, इससे उगाई गई फसलें स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड को ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। हालांकि जैविक खाद के उपयोग में कुछ सावधानियां भी जरूरी है। हमेशा अच्छी तरह सड़ी हुई खाद का ही उपयोग करें। अधपकी खाद फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। खाद की मात्रा का सही ध्यान रखें।
1: जैविक खाद के उपयोग के संदर्भ में अभी आपने ये जानकारी हासिल की।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: अब हमें लगता है कि आपको इंतजार होगा आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर जानने का। तो भाइयों, हम आपको बता दें कि हमारा आज का प्रश्न था, एक्टिवेटेड कार्बन नारियल के किस भाग से बनाया जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि एक्टिवेटेड कार्बन नारियल के खोल यानी नरेटी से बनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

और साथियों, बातों और जानकारियों की किसानवाणी की इस संध्या को अब हम यहीं पर समेटे लेते हैं, क्योंकि वक्त हमें और अनुमति नहीं दे रहा। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल, और फिलहाल के लिए शिवानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: श्रोताओं, अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम

438 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुनिधि चौहान के गाए नॉकआउट फिल्म के इस गीत से।

श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था दुनोए न जाने क्यों फिल्म से। सत्य प्रकाश के लिखे गीत को संगीत से सजाया था निखिल ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है गोलमाल फिल्म से। आवाज़ें हैं शान और अनुष्का मनचंदा की, गीत रचना कुमार की, संगीत से सजाया प्रीतम ने।

आवाजों में ये गीत था गुजारिश फिल्म से। संगीत से सजाया संजय लीला बंसाली ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत है विशाल ददलानी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम ब्रेक के बाद। गीतकार है पारसून जोशी तथा संगीतकार है विशाल शेखर।

बाबुल का लिखा ये गीत था मूसा फिल्म से, आवाज़ें थी कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की। इस गीत के साथ ही शाम-ए-बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजय

प्रोग्राम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर। आज शाम 7:30 पर युवाणी में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश की शान, जो कि केंद्रित होगा बुलंद आवाज के धनी मुकेश पर। रात 10 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम संदेश आते हैं। कल सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा उर्वरकों का सही प्रयोग भाग एक। कल सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम पसंद शीर्षक पर केंद्रित होगा।

कल सवेरे 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। तत्पश्चात 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सुनेंगे कवियत्री अंजलि कुमार द्वारा स्वरचित काव्य पाठ, साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर और शबीर कुमार। तत्पश्चात आनंद दीजिए फिल्मी गीतों का 9:00 तराने सुहाने कार्यक्रम में। पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में धोंदुतई कुलकर्णी का गायन प्रसारित किया जाएगा। कल दिन के 11:00 आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1333वीं कड़ी। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे तेलुगु में महिलाओं के लिए कार्यक्रम, तत्पश्चात मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे भक्ति गीत। तत्पश्चात 4:30 पर लम्हे कार्यक्रम की 16वीं कड़ी सुनवाई जाएगी। तमिल कार्यक्रम में 5:00 आप सुनेंगे एक ही संगीतकार द्वारा संगीतबद्ध गीतों को। तत्पश्चात बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर वी भास्करन से बातचीत की जाएगी, विषय रहेगा वर्ष भर गेंदे की खेती।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, बस कुछ ही पलों बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक रोकने के लिए

0: पक्षों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडंगा के विपणन को सहमति दे दी है। सांसद विष्णुपद रे ने निकोबार में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वर्ष का निश्चित कार्यकाल लागू करने की मांग की और शहीद कैप्टन असीम कुमार भट्टाचार्य के सम्मान में जेएनआरएम में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षा पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा पत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा युवाओं के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है और कई आरोपी जेल में है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन समझौतों में किसानों के हितों का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इस अवसर पर एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है या भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सांसद और श्रद्धांजलि। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सांसद विष्णुपद रे ने प्रशासन के मुख्य सचिव से निकोबार जिले में तैनात सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वर्ष का निश्चित कार्यकाल नीति लागू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह व्यवस्था अंडमान और निकोबार पुलिस की मौजूदा नीति की तर्ज पर लागू की जा सकती है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि निकोबार जिले में कार्यरत कई सरकारी कर्मचारियों को सीमित परिवहन सुविधा, आवास की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, संचार संबंधी कठिनाइयों और शिक्षा सुविधाओं के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबी एवं अनिश्चित तैनातियों के कारण कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पारिवारिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। सांसद ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि 30 जुलाई 2007 को जारी स्थानांतरण नीति की समीक्षा कर उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि यह नीति लंबे समय से अपरिवर्तित है और वर्तमान परिस्थितियों

अनुरूप इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। राजधानी श्री विजयपुरम में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अंडमान निकोबार यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, नशे में वाहन चलाने पर रोक लगाना और तेज गति तथा लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। चालू वर्ष में अब तक शराब के नशे में वाहन चलाने के आरोप में 754 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस वर्ष मई में 70 और जून में 168 वाहन चालकों का चालान किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन कर सड़क सुरक्षा में सहयोग करें। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में शहीद कैप्टन असीम कुमार भट्टाचार्य को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मरणोपरांत सेना पदक से सम्मानित कैप्टन भट्टाचार्य के सम्मान में महाविद्यालय परिसर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन महाविद्यालय की प्रधानाचार्या डॉक्टर पल देवदास के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर NCC की दोनों इकाइयों के अधिकारी, पूर्व छात्र, शहीद कैप्टन असीम कुमार भट्टाचार्य के मित्र तथा महाविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन ने कल देर रात भातुबस्ती के कैरी रोड स्थित एक घर में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 2.145 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस के अनुसार स्थानीय बाजार में अवैध रूप से गांजा रखे जाने की गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। यह छापेमारी पुलिस उपाधीक्षक नारकोटिक्स सुम्मा मड्डा के पर्यवेक्षण में हुई। पुलिस ने प्रतिबंधित पदार्थ जब्त कर आरोपी को NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नशीले पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए जाँच जारी है। अंडमान और निकोबार पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। मायाबंदर स्थित महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रिसोर्स पर्सन के अस्थायी पैनल की सूची जारी कर दी है। यह अस्थायी पैनल महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी पैनल से संबंधित किसी भी दावे या आपत्ति को 25 जुलाई तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम पैनल तैयार किया जाएगा। दावा या आपत्ति ईमेल अथवा व्हाट्सएप नंबर 9474246265 के माध्यम से भेजी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन ने श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर ओपन ब्लिट्स शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया। कला एवं संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने पहली चाल चलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का अनुशासन, एकाग्रता, खेल भावना और निष्पक्ष खेल के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में सचित बैरा ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि जिनसन सैमुएल दूसरे और शैलेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक रोकने के लिए सभी पक्षों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन को सहमति दे दी है। सांसद विष्णुपद रे ने निकोबार में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वर्ष का निश्चित कार्यकाल लागू करने की मांग की और शहीद कैप्टन असीम कुमार भट्टाचार्य के सम्मान में JNRM में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार MV हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 23 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV स्ट्रेट आइलैंड लिटिल अंडमान के लिए कल सुबह 6:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी कल दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से। MV कालीघाट लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तेरेसा कचाल और नानकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर बृहस्पतिवार 23 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान रविवार 26 तारीख को दोपहर 12 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। MV बारटान स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से। MV रंगत शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 23 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। MV कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल दिन दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। MV बारटान स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान परसों बृहस्पतिवार 23 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा।

जलयानों की यात्रा कार्यक्रम के बाद अब जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 1123192233200, 0301923377 और 0301922400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। अब आरंभ होता है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में पहले सुनिए लक्ष्य फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत था 15 अगस्त फिल्म से। रानी मलिक के लिखे गीत को संगीत से सजाया था राजन अरविंद ने। इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस माह का तीसरा मंगलवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम देश की शान।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत का अपना एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग में अनेक ऐसे महान गायक हुए जिन्होंने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज से संगीत की दुनिया को समृद्ध किया और अपने गीतों के माध्यम से करोड़ों लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। इन महान गायकों में मुकेश का नाम अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस देश की शान कार्यक्रम में हम बात करेंगे बुलंद आवाज के धनी मुकेश चंद माथुर जी के बारे में। मुकेश हिंदी सिनेमा के उन महान पार्श्व गायक में से एक थे जिनकी आवाज में एक अलग ही मिठास, सादगी, दर्द और भावनात्मक गहराई थी। उनकी आवाज सुनते ही ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे मन की बात कह रहा हो। दोस्तों, मुकेश की आवाज में दिखावा नहीं था बल्कि भावनाओं की सच्चाई थी। उन्होंने प्रेम को अपनी आवाज दी, विरह और बिछड़ने के दर्द को स्वर दिया, जीवन की खुशियों को गीतों में पिरोया और आम इंसान के संघर्ष तथा उसकी भावनाओं को अपनी गायकी के माध्यम से व्यक्त किया। यही कारण है कि मुकेश के गीत केवल उस दौर में ही लोकप्रिय नहीं हुए बल्कि आज भी उनकी आवाज़ संगीत प्रेमियों के दिलों में उसी तरह जीवित है। उनकी आवाज़ समय की सीमाओं से परे है। आज की पीढ़ी जब उनके गीत सुनती है तो उनके संगीत में अपने भावों और संवेदनाओं की झलक महसूस करती है।

दोस्तों, मुकेश जी का पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। उनका जन्म 22 जुलाई सन 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार सामान्य पृष्ठभूमि से था। बचपन से ही उनके अंदर संगीत के प्रति एक विशेष आकर्षण था। कहा जाता है कि वे अक्सर गाने सुनने और उन्हें गुनगुनाने में रुचि रखते थे। हालांकि उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन यही साधारण सा बालक भारतीय संगीत जगत का एक महान और अमर नाम बनेगा। दोस्तों, मुकेश की आवाज़ में बचपन से ही एक विशेष आकर्षण था। उनके परिवार में संगीत का वातावरण बहुत अधिक नहीं था, लेकिन उनकी प्रतिभा धीरे धीरे स्वयं सामने आती गई। वे महान गायक कुंदन लाल सहगल, जिन्हें लोकप्रिय रूप से KL सहगल के नाम से जाना जाता है, वे उनसे बहुत प्रभावित थे। सहगल उस समय भारतीय फिल्म जगत के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। मुकेश भी उनकी गायकी को बहुत पसंद करते थे और आरंभिक दौर में उनकी गायन शैली से प्रभावित होकर गाने का प्रयास करते थे। दोस्तों, वर्ष 1941 में फिल्म निर्दोष से मुकेश ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पार्श्व गायन की ओर कदम बढ़ाया। उनके शुरुआती दौर में उन पर KL सहगल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी स्वयं की गायन शैली विकसित की। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। उन्होंने यह साबित किया कि किसी महान कलाकार से प्रेरणा लेना अलग बात है, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना ही सच्ची सफलता है। वर्ष 1945 में फिल्म पहली नज़र के गीत दिल जलता है तो जलने दे, इस गीत ने मुकेश को विशेष पहचान दिलाई। इस गीत ने श्रोताओं के बीच उनकी आवाज़ को लोकप्रिय बनाया। धीरे धीरे उनकी आवाज़ फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने लगी। उनकी आवाज़ में जो दर्द और भावनात्मक गहराई थी, वह श्रोताओं के दिलों को छूने लगी। दोस्तों, मुकेश की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी भावनाओं को सच्चाई और सरलता के साथ व्यक्त करने की क्षमता। वे जब कोई गीत गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे वे केवल शब्दों को नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भी अपनी आवाज़ दे रहे हों। उनके गीतों में बनावटीपन कम और आत्मीयता अधिक थी। उनकी आवाज़ में एक आम इंसान की संवेदनाएं सुनाई देती थीं।

दोस्तों मुकेश विशेष रूप से दर्द और विरह के गीतों के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी आवाज़ में एक ऐसी करुणा थी जो सीधे दिलों को छूती थी। जब वे बिछड़ने या अकेलेपन से जुड़े गीत गाते थे तो श्रोता उस दर्द को महसूस करने लगते थे। लेकिन केवल दर्द ही उनकी गायकी की पहचान नहीं थी, उन्होंने प्रेम, दोस्ती, जीवन दर्शन, आशा और खुशियों से जुड़े अनेक यादगार गीत भी गाए। हिंदी सिनेमा में मुकेश और अभिनेता राज कपूर की जोड़ी को हमेशा याद किया जाएगा। जिस प्रकार राज कपूर ने पर्दे पर आम आदमी, उसकी मासूमियत, उसके सपनों और उसके संघर्ष को प्रस्तुत किया, उसी प्रकार मुकेश की आवाज़

ने उन भावनाओं को गीतों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी। राज कपूर के लिए मुकेश की आवाज़ इतनी उपयुक्त मानी जाती थी कि दोनों की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेता गायक जोड़ियों में शामिल हो गई। आवारा, श्री 420, संगम और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में मुकेश की आवाज़ ने राज कपूर के किरदारों को एक अलग पहचान दी। आवारा हूँ जैसे गीत ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता दिलाई। इस गीत की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी इसे पसंद किया गया। यह गीत उस दौर की सामाजिक और मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करता था।

दोस्तों, मुकेश को उनके संगीत योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1974 में आई फिल्म रजनीगंधा के गीत कई बार यूं ही देखा है के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त उन्हें मरणोपरांत फिल्म कभी कभी के गीत कभी कभी मेरे दिल में के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके महान संगीत योगदान का प्रमाण है। दोस्तों, मुकेश का निजी जीवन भी सरल और पारिवारिक था। उनका विवाह सरल त्रिवेदी से हुआ था और उनके परिवार में संगीत की विरासत भी आगे बढ़ी। उनके पुत्र नितिन मुकेश ने भी गायन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। इस प्रकार मुकेश की संगीत परंपरा आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। दोस्तों, मुकेश का जीवन भले ही संगीत की ऊंचाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उनका सफ़र संघर्ष और मेहनत से भी जुड़ा था। उन्होंने अपनी शुरुआती दौर में कठिनाइयों का सामना किया और धीरे धीरे ही अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सफलता हमें यह संदेश देती है कि प्रतिभा के साथ मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास भी आवश्यक है।

दोस्तों, मुकेश का निधन 27 अगस्त सन 1976 को हुआ। उस समय वे अपने संगीत कार्यक्रम के सिलसिले में विदेश में थे। उनके निधन से भारतीय संगीत जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई, लेकिन महान कलाकारों की तरह मुकेश भी अपनी कला के माध्यम से हमेशा जीवित रहे। आज मुकेश को इस दुनिया से गए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। रेडियो, टेलीविजन, संगीत कार्यक्रमों और डिजिटल माध्यमों पर उनके गीत लगातार सुने जाते हैं। नई पीढ़ी के लोग भी उनके गीतों को पसंद करते हैं। यह किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि समय बीतने के बाद भी उनकी कला लोगों के दिलों में जीवित रहे।

दोस्तों, मुकेश केवल एक पार्श्व गायक नहीं थे, वे भावनाओं के गायक थे। उन्होंने अपनी आवाज़ के माध्यम से उन भावनाओं को शब्द दिए जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। उनकी आवाज़ में एक ऐसी आत्मीयता थी जो श्रोता को अपनेपन का एहसास कराती थी। यही कारण है कि उनके गीत आज भी सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं। दोस्तों, मुकेश की आवाज़ में एक अलग प्रकार की बुलंदी थी। यह बुलंदी केवल उनकी आवाज़ की ऊंचाई में नहीं थी, बल्कि उनकी भावनाओं की गहराई और उनकी कला की महानता में थी। दोस्तों, वे भारतीय संगीत जगत के ऐसे महान कलाकार थे जिनकी आवाज़ में दिल की सच्चाई थी। दोस्तों, मुकेश भारतीय पार्श्व गायन के आकाश में चमकने वाले वो सितारे हैं जिसकी रोशनी संगीत प्रेमियों के दिलों में सदैव बनी रहेगी। वे सचमुच बुलंद आवाज़ के धनी थे और उनकी मधुर भावपूर्ण तथा आत्मीय आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी।

0: तो दोस्तों, आज के इस देश की शान कार्यक्रम में हमने बात की बुलंद आवाज के धनी मुकेश चंद माथुर के बारे में, और इसी के साथ हमारा आज का युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आप नहीं बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक

0: 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही

और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:14 और 20 सेकेंड हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं येसुदास और हेमलता के गाए चितचोर फिल्म से।

के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना NIPP के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी मोड, प्रायोजित कार्यक्रम मोड तथा निशुल्क मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्रारूप, पॉडकास्ट, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 मिनट या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 तथा उसके नवीनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल hooairportblair@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रसार भारती तथा आकाशवाणी की आधिकारिक वेबसाइट prasarbharti.gov.in/NIPP, akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF देखें। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। ये सुनहरा अवसर न चूके अपने रचनात्मक कार्यों को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक तक पहुंचाने के लिए आज ही अपना प्रस्ताव भेजे। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और येसुदास को फिल्म त्रिशूल बोल खय्याम की।

0: चलती का नाम गाड़ी। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं मजरू तथा संगीतकार हैं आरडी बर्मन।
1: जगह कैसी है?
2: बड़ी प्यारी जगह मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती। मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
2: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
2: जैसे
1: कर सकोगे?
2: मैं हर काम कर सकता हूँ।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत था चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। गीतकार थे मजरूह तथा संगीतकार थे आर डी परमन। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत APCCF नोडल अधिकारी FCA और MS अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संविदा आधार पर कंसल्टेंट के 2 पदों पर योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी

0: को प्रतिमाह 40,000 का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति का स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, मरीन बायोलॉजी, ओशियन स्टडीज अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण अध्ययन, इम्पैक्ट असेसमेंट, इकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, रिस्क एनालिसिस अथवा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित कार्य अनुभव तथा एमएस ऑफिस का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन 100 अंकों की वेटेज आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अंडमान एवं निकोबार वन विभाग तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की वेबसाइट https://forest.and.nic.in एवं https://andaman.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित कार्यालय APCCF वन सदन हेडो श्री विजयपुरम में केवल ऑफलाइन जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 29 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
2: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: गौरवगान कार्यक्रम के तहत आइए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

गौरवगान कार्यक्रम के तहत अभी आप चंद देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज़ जल डमरू

0: मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।

0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए हैं। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा, एक नई पहल, पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमरीका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगें मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue.

Manthan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए जैव अर्थव्यवस्था 2035 हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोडमैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ

0: फिल्म और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
1: नमस्कार, बायो इकोनॉमी 2035 के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली केडिया। डॉक्टर शैली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते, धन्यवाद।
1: डॉक्टर शैली, जैविक अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी कुछ नया टर्म है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में इसके मायने समझा सके।
2: जब हम बायो इकोनॉमी की बात करते हैं या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो सरल शब्द में कहूँ तो जैव अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पौधे, पशुओं, सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और जितनी जो रेन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसका यूज करके हम अलग अलग चीजों में उसका यूज करते हैं, जैसे कि हम दवाइयां हो, भोजन हो, ईंधन हो, रसायन हो, सामग्री हो, हम उसका उपयोग ये सारे चीजों में करते हैं और हम अर्थव्यवस्था के प्रति उसको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तीन शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहें, जिस तरीके से इंडिया में इसको देखा जा रहा है या ग्लोबली भी देखा जा रहा है, एक तो जैसे उस शब्द में ही है जैव

0: करते हैं, जैसे कि हम दवाइयां हो, भोजन हो, ईंधन हो, रसायन हो, सामग्री हो, हम उसका उपयोग ये सारे चीजों में करते हैं और हम अर्थव्यवस्था के प्रति उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तीन शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहें, जिस तरीके से इंडिया में इसको देखा जा रहा है या ग्लोबली भी देखा जा रहा है, एक तो जैसे उस शब्द में ही है जैव अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, दूसरा रोजगार और तीसरा पर्यावरण। तो हम जब इंडिया में उसको बोलते हैं तो बायो E3 पॉलिसी बोलते हैं, तो बेसिकली बायो इकोनॉमी और इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकता है। अभी हम देखें तो बहुत चर्चा में हॉर्मूज है, उसके कारण हमें कैसे एनर्जी सिक्योरिटी और पेट्रोल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स जो हम करते हैं उससे हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके एनर्जी सिक्योरिटी में भी बाय इकोनॉमी से हम हमारा लाइक रिड्यूस डिपेंडेंस हो सकता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इम्पोर्ट्स, एंड ऑल्सो लोअर पोल्यूशन, और डेफिनेटली जैसे रोजगार की हम बात करते हैं।
1: आपने कहा कि बहुत सारा इसका विस्तृत व्यापक अर्थ है, तो मोटे तौर पर इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं?
0: एकदम मोटा मोटा देखा जाए तो अभी जस्ट 4-5 दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप देखा जाए तो चार क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका जैव औद्योगिक क्षेत्र, बायो इंडस्ट्रियल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका बायो फ्यूल हो जाता है, जो ईंधन के प्रति काम आता है, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स आता है, केमिकल्स होते हैं, बायो प्लास्टिक्स होते हैं, आजकल प्लास्टिक भी बड़ी बड़ी समस्या है। दूसरा एक क्षेत्र है जैव फार्मा, इसको बायो फार्मा या जो आपके स्वास्थ्य के थ्रू वैक्सीन के थ्रू हो, कोविड के टाइम भी इंडिया में पूरे वर्ल्ड एक वैक्सीन रेस में जुट गई थी, बायो सिमिलर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज, जीन थेरेपीज, तो ये सारे बायो फार्मा और हेल्थ क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है आपका जैविक कृषि, विच इज बायो एग्रीकल्चर, जिसमें आप देखा जाए तो जैविक कीटनाशक या फिर आपके बायो फर्टिलाइजर, बायो खाद्य जो होते हैं, बायो स्टिमुलेंट्स और इवन बायो सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन के लिए, और क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, देखते जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे निपटने के लिए ड्रॉट रेजिलियंट क्रॉप्स हो गया, तो ये आपका जैव कृषि में आता है। और चौथा है आपका जैव सेवाएं और अनुसंधान। अगेन आप देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको आप अगर यूज करके, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में यूज करें, क्लिनिकल रिसर्च में यूज करें, तो उससे बहुत ही बारीक लेवल का रिसर्च हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, और जैसे जिससे आपके नए नए दवाएं की खोज हो सकती है।
1: औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण जरूरत है अगर हम रोजगार की बात करते हैं या हम उत्पादन की बात करते हैं। तो अगर बायो इंडस्ट्री का जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिसमें बायो फ्यूल की भी आपने बात करी, बायो प्लास्टिक की भी बात करी, इस बारे में बताएं ये किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हमारे लिए एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा सकता है और अर्थव्यवस्था को सहारा भी दे सकता है।
0: तो जैसे कि हम बायो इंडस्ट्री में, मैं जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल बायो फ्यूल का बात कर ले, बायो गैस की बात कर ले, तो हम जो आप समझ लीजिए कोयला या फिर कोई फॉसिल फ्यूल यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जगह अगर हम बायोफ्यूल यूज करें तो एक तो वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है, दूसरा जो बाहर से फ्यूल आता है उस पे कम डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक दूसरा बड़ा एरिया है आपका प्लास्टिक्स, हम रोज प्लास्टिक्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी अलग अलग चीजों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक यूज करता है, अगर उसके जगह हम बायो प्लास्टिक्स यूज करें तो वो थोड़ा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, तो खेती भी उसी मात्रा में करनी पड़ेगी, उससे फिर रोजगार का ये लिंकेज है कि किसान को उससे रोजगार मिलेगा और जो उसके जो बीच में जो उसके सप्लाई चेन्स है उसमें जितने लोग हैं उसमें रोजगार मिलेगा, और थोड़े से और आप थोड़े से हायर लेवल पे जाए तो रिसर्च में या जो आपका जो बायोटेक वाला जो टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी काफी बढ़त हो सकती है।
1: जी, आपने जैसे औद्योगिकरण की बात करी तो इसमें आपने एक जिक्र किया था बायो प्लास्टिक का। प्लास्टिक निश्चित तौर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा आज के डेट में चुनौती है, तो ये बायो प्लास्टिक से इस खतरे को कितना कम किया जा सकता है?
0: तो डेफिनेटली जब हम बायो प्लास्टिक्स की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो भी मटेरियल है, फिलहाल अभी तक एक कोर R&D स्टेज पे है, जिसमें आप मटेरियल्स की बात करें, कौन सा
1: जी
0: मटेरियल, उसमें आपका एल्गे भी आ सकता है, उसमें आपका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है खेती करने के बाद जो पौधा बच जाता है उसको जलाने के जगह उसको आप यूज करें बायो पैकेजिंग में।

0: क्योंकि प्लास्टिक्स आपके अलग अलग टाइप के पैकेजिंग में यूज होता है। आप जो भी सामान हम लाते हैं किराने की दुकान से, ज्यादातर चीजों में वो, चाहे वो उसमें वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, तो आप देखा जाए तो प्लास्टिक का यूज बहुत सारी चीजों में होता है। और अभी फिलहाल हम देखा जाए तो अगर हम वो सारा पैकेजिंग को ही रिड्यूस कर सके या रिप्लेस कर सके बायो पैकेजिंग से प्लास्टिक्स की जगह, तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब देखा जाए बायो प्लास्टिक अभी भी थोड़ा सा न्यू एरिया है, पर इसमें इसीलिए जो नीति आयोग ने अभी एक रोड मैप बनाया है वो इसमें कह रहा है कि आपको 50,000 करोड़ की एक फंड सेटअप किया जाए, उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू ये सारी इनोवेशन को प्रमोट किया जाए जो आपकी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करें।
1: आपने बताया 50,000 करोड़ का एक फंड नीति आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है। अगर मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसका कितना व्यापक बाजार है, और अगर जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का योगदान रहता है उसमें ये बायो इकोनॉमी का कितना योगदान फिलहाल है?
0: तो अगर हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काफी तेजी से बढ़ रहा है। और देखा जाए इंडिया में ही अगर हम 10 साल पहले 2014 के करीब हम देखें तो उसमें उस समय उसका बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन $10 बिलियन के करीब, और अभी आज के दिन में करीब करीब 4.8% या समझ लीजिए लगभग 5% ऑफ जीडीपी बायो इकोनॉमी बेस्ड सेक्टर से ऑलरेडी आ रही है। और इसका नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट आया है उसमें ये तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2047 तक 2.6 ट्रिलियन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उसको हो सकता है और 2035 तक 6.91 बिलियन। बट हम देखा जाए तो अगर हमने पिछले 10 सालों में लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी को।
1: जी, मतलब 2014 में जो सिर्फ $10 अरब का बाजार था भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका इतना योगदान था, वो अब बढ़ते बढ़ते 2025 तक वो तकरीबन $195 अरब तक पहुंच गया है। तो बहुत बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में दे रहा है, तकरीबन 5% का अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। अब अगर हम बात करें तो इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन में भी हमको काफी मदद मिलती होगी। और अभी आपने जिक्र किया था जो खेती के जो रेजिडुअल्स हैं, मतलब खेती में करने के बाद जो बच जाता है, जिस तरह से पराली जलाने की भी समस्या होती है, क्या खेती में इस बायो इकोनॉमी को या बायो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हम उसका कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं?
0: डेफिनेटली अभी बहुत सारे प्रयास जारी हैं और कोशिश किया जा रहा है कि पराली को यूज करके उससे पैकेजिंग मटेरियल या फिर उससे बायो एनर्जी बनाया जाए, उसको मशरूम ग्रो करने के काम में भी लिया जा रहा है, या उससे ईंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है
1: जी
0: उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। पर उसके अलावा भी हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी जैसे बताया जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए देखा जाए तो सूखा गर्मी इन सबों को मतलब टॉलरेट करने वाली जो क्रॉप वेराइटीज है वो भी पार्ट है। फिर उसके बाद आप जो बोलते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर में जो जाते हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो कीटनाशक हो, तो वो भी बायो पेस्टिसाइड उसमें यूज करके या बायो फर्टिलाइजर्स यूज करके आप सॉइल हेल्थ भी इंश्योर कर सकते हो और प्लांट प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इनमें बहुत पोटेंशियल है आज के दिन में। बट ऑल्सो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेक्टर, तो उसमें आप देखा टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, इनोवेशन, इसमें भी बहुत सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि कि वो टेक्नोलॉजी को एक लैब से फील्ड में या एक लार्ज स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन तक लेके जा सके।
1: आपने जैसे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र अब उतना नया नहीं रह गया, लोगों की जागरूकता खास तौर पे इसके प्रति काफी हो गई है, तो सरकार ने भी इस पे बहुत विशेष ध्यान देना शुरू किया है, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि भी जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बचाव करने के लिए ये जो बायो इकोनॉमी है, जैविक अर्थव्यवस्था है, वो सहायक या योगदान कर सकती है?
0: बिल्कुल, सबसे पहले ही जो बात की थी फ्यूल की बात हो रही थी, एनर्जी की बात हो रही थी, अगर हम कोयला या फॉसिल फ्यूल के जगह हम बायो फ्यूल यूज करते हैं या बायो एनर्जी यूज करते हैं एक सही मात्रा में, तो उससे डेफिनेटली आप एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की तो बात हम कर ही रहे हैं, पर एक जो एक क्लाइमेट अडेप्टेशन होता है
1: जी
0: स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आप देखिए क्रॉप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल लीजिए या क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर बोल लीजिए, तो

0: वैसे टेक्नोलॉजीज, वैसे क्रॉप्स अगर डेवलप हो जो ड्रॉट को सह पाए, तो इससे डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों में ही बहुत फायदा होगा।
1: जी, वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो ये बायो इकोनॉमी का कितना बड़ा योगदान रहता है? फिलहाल अगर इसका आकार देखा जाए तो वैश्विक तौर पे कौन से देशों में बहुत ज्यादा अभी इसको प्रभावी तौर पे काम ले रहे हैं इसे?
0: वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें आपके जो टॉप कंट्रीज हैं उसमें डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां पे बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भी है। यूरोपियन यूनियन में देखा जाए उधर भी मतलब काफी बड़ा योगदान है बायो इकोनॉमी का। तो ये सारे जो अभी आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, एक ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जैसे देखा जा रहा है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था। तो ये ग्लोबल लेवल पे ये बहुत ही तेजी से ये सेक्टर उभर के आ रहा है, जिसमें आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोप हो, और आज के दिन में देखा जाए डेफिनेटली चाइना, चीन, वो
1: जी,
0: भी बहुत तेजी से उभर के आ रहा है।
1: भारत सरकार ने आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए या इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या क्या लक्ष्य बनाए हैं और क्या इसका टारगेट रखा है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं?
0: एक तरीके से देखा जाए आज के दिन में भी आप बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अभी भी मुझे लगता है कि एक तरीके से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए कि ये क्या है और उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, थोड़े से और प्रयास की जरूरत है। साइंस लेवल पे या साइंटिफिक कम्युनिटी लेवल पे आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, तो ये सारे अपने बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज करते रहते हैं, वेबिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन निकालते हैं। पर जैसे मेरे ख्याल से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए और उसको थोड़ा सा और सरल तरीके से वो मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे आप अपने रेडियो के माध्यम से इसको आपका ये प्रयास है, बट मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस, चाहे वो इससे लिंक्ड एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस हो, कल को क्या क्या मतलब आज के दिन में हमारे इतने सारे युवा स्कूल में हैं, वो आगे सोचेंगे कि उनके पास और क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीजों के बारे में, इसके स्कॉलरशिप के बारे में प्रमोट करने के लिए, इससे रिलेटेड जितने कोर्सेज है उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा और एटलीस्ट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इसमें और प्रयास करने की जरूरत है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जैव अर्थव्यवस्था 2035, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मंथन।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब आरंभ होता है कार्यक्रम संदेश आते हैं।

संदेह से आते हैं कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए आप अपना नाम व पता, फिल्म का नाम, गीत के बोल टाइप करके व्हाट्सएप कीजिए हमें इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार पुनः नोट करें 9474234000। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और लेते हैं प्रोग्राम का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है कैम्बलवे से पैट्रिक और स्कॉलस्टिका ने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं मिलेंगे मिलेंगे फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं सोनू।

नीरज श्रीधर और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये गीत था गॉड टू सी ग्रेट हो फिल्म से। जलीस शेरवानी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था साजिद वाजिद ने। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता थी डिगलीपुर से प्रिया।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं इरशाद कामिल का लिखा एवं प्रीतम का संगीतबद्ध किया हुआ गीत यारियां फिल्म से। स्वर दिया अरिजीत सिंह ने। इस गीत को सुनना चाहा है बम्बू फ्लैट से साजिया और नाजनीन ने।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में ये गीत था यारियां फिल्म से। एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई। संदेश से आते हैं कार्यक्रम को जारी रखते हुए, आइए सुनते हैं रेड फिल्म से राहत फतेह अली खान को। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर तथा संगीतकार हैं तनिष्क बागची। इस गीत को सुनना चाहा है हडबे से आकाश और प्रियांशु ने।

शादीपुर से शहबाज और यूसुफ की पसंद पर आइए अब सुनते हैं सिंघम रिटर्न्स फिल्म का ये गीत अंकित तिवारी और तुलसी कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा संदीप नाथ ने, संगीत से सजाया जीत गांगुली।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था किल दिल फिल्म से। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी टुशनाबाद से अंकिता और वैभव ने। इस गीत के साथ ही संदेश आते हैं कार्यक्रम से, चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30:40 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026।

में सुबह के 5:28 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ।
1: डरो मत, निर्भय बनो, यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। भय का बिल्कुल न होना नहीं, बल्कि सही और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भय पर विजय पाना है। जो व्यक्ति ईमानदारी, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन जीता है, वो हर कठिनाई का साहसपूर्वक सामना करता है। निर्भय व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सदा सत्य, सदाचार और आत्मविश्वास को अपनाकर निर्भय जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।
0: अनमोल विचार अभी आप सुन रहे थे और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए एक मातृ वंदना।